नमस्कार, 4EBK के ग्लोबल प्रसारण के साप्ताहिक हिंदी कार्यक्रम नमस्ते वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आपकी आरजे सीमा श्री कुमार। आज मैं लाई हूं आपके लिए नॉस्टैल्जिक गीतों से भरा यह कार्यक्रम। सिट बैक एंड एंजॉय सम नॉस्टैल्जिक सॉन्ग्स

अभी आपने सुना फिल्म यादों की बारात का बढ़िया गीत आशा जी और रफी जी की आवाज में। फिल्म में इस गीत पर अभिनय किया था उस समय की हार्टथ्रोब जीनत अमान और चॉकलेटी लवर बॉय विजय अरोड़ा ने। चलिए पंचम दा जी का अगला गीत सुनते हैं फिल्म मेरे जीवन साथी से, और गीत है ओ मेरे दिल के चैन।

अच्छा दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आरडी बर्मन का नाम पंचम कैसे पड़ा? कहा जाता है कि जब आरडी बर्मन जी छोटे थे और रोया करते थे, तो शास्त्रीय संगीत के पांचवें सुर पा की श्रुति में रोया करते थे। इस स्वर को पंचम कहते हैं, तो उनका निकनेम पंचम पड़ गया। हमारे बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार्स में गिने जाने वाले अशोक कुमार आरडी बर्मन को बचपन से देखते आए हैं, तो बचपन में बर्मन दा पास सिलेबल को बार बार दोहराते थे, तो अशोक कुमार ने उन्हें पंचम नाम दे दिया, ऐसा भी कहा जाता है। चलिए उनका अगला ब्लॉकबस्टर गीत सुनते हैं, फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से।

आरडी बर्मन का पूरा नाम था राहुल देव बर्मन। उनके पिताजी थे सचिन देव बर्मन, जो कि एसडी बर्मन के नाम से प्रसिद्ध संगीतकार हैं। पंचम दा ने काफी छोटी उम्र में एक गाना कंपोज किया था, जिसे उनके पिताजी एसडी बर्मन ने फिल्म फंटूश में इस्तेमाल किया 1956 में। सर जो तेरा चकराए वाली धुन भी पंचम दा की ही थी, जिसे पिताजी ने प्यासा फिल्म में इस्तेमाल किया और यह चंपी वाला गीत काफी लोकप्रिय हुआ। चलिए अब शोले फिल्म का यह गीत सुनते हैं।

आप सुन रहे हैं 4EB के ग्लोबल प्रसारण में साप्ताहिक हिंदी प्रसारण नमस्ते वर्ल्ड, आपकी आरजे सीमा श्री कुमार के साथ। तो हम आरडी बर्मन जी यानी हमारे पंचमदा की बातें कर रहे थे और उनके संगीत से बने नॉस्टैल्जिक गीत सुन रहे थे। एक किस्सा ऐसा है कि 1961 में महमूद अपनी फिल्म छोटे नवाब के संगीत के लिए SD बर्मन जी से मिलने उनके घर आए। तब SD बर्मन जी को अपनी व्यस्तता की वजह से यह फिल्म नकारनी पड़ी, परंतु इस मीटिंग के दौरान महमूद जी की नजर तबला बजा रहे पंचमदा पर पड़ी और सीधे पंचमदा को अपनी फिल्म के संगीतकार के रूप में उन्होंने साइन कर लिया। चलिए अब सुनते हैं पंचमदा का यह सुंदर सा गीत फिल्म कटी पतंग से।

1966 में पंचम दा की शादी हुई रीता पटेल से। रीता ने अपनी सहेलियों से शर्त लगाई थी कि वह आरडी बर्मन के साथ फिल्म डेट लेकर दिखाएगी, और फिर वह डेट वाली मुलाकात शादी में बदल गई। परंतु 1971 में दोनों का डिवोर्स भी हो गया। होटल में सेपरेशन के बाद अकेले बैठे पंचम दा ने परिचय फिल्म का फेमस गीत मुसाफिर हूं यारों की धुन बनाई। 1980 में पंचम दा ने अपने परिवार की न सुनते हुए आशा भोसले जी से शादी की, और उसके बाद कई हिट नंबर्स हम जैसे संगीत प्रेमियों को दिए। चलिए सुनते हैं आंधी फिल्म का यह गीत।

बर्मन दा को हिंदी फिल्मी संगीत में रेवोल्यूशन लाने वाले संगीतकार के रूप में जाना जाता है। बंगाली फोक म्यूजिक उनका पसंदीदा संगीत था, परंतु वे सभी तरह के संगीत को अपने गीतों में डाला करते थे। राजेश खन्ना के प्रसिद्ध रोमांटिक फिल्मों में बर्मन दा ने इलेक्ट्रॉनिक रॉक म्यूजिक को पॉपुलराइज किया, बंगाली फोक म्यूजिक के साथ डिस्को और रॉक म्यूजिक को मिलाया। उनके पियानिस्ट द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए जैज म्यूजिक को भी उन्होंने अपने संगीत में शामिल किया। वेस्टर्न, लैटिन, ओरिएंटल, अरबिक संगीत के अंश उनके संगीत में पाए जाते हैं। चलिए अब सुनते हैं यह गीत फिल्म कुदरत का।

पंचमदाह के बारे में एक बहुत ही मजेदार किस्सा मैंने ऑनलाइन आर्टिकल में पढ़ा था। 1965 में भूत बंगला नामक एक फिल्म आई थी, उसमें एक गीत था जागो सोने वालों। इस गीत को सुनकर पंचमदाह के पड़ोस के कुछ बच्चों ने बताया था कि उन्होंने यह धुन बहुत पहले ही पंचमदाह से सुनी हुई थी। किस्सा यह था कि ये बच्चे पंचमदाह के बगीचे से आम चुराते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। तब पंचमदाह ने इन बच्चों को अपने घर में ले जाकर बिठाकर यह धुन सुनाई थी पनिशमेंट के रूप में। चलिए अब यह फेमस गीत सुनते हैं फिल्म गोलमाल से।

पंचमदा हारमोनिका बढ़िया बजाते थे। म्यूजिक इंडस्ट्री में शुरुआत भी उनकी उसी तरह से हुई थी। चुरा लिया है तुमने वाले गीत में चम्मच द्वारा ग्लास पर मारने की ध्वनि, सोलवा सावन के गीत में माउथ ऑर्गन बजाना, हेलन के कई डांस नंबर्स में एक अलग ही तरह का स्वर प्रदान करना, ये सब पंचमदा के कारनामे थे। पूरी रात बालकनी पर बैठकर लाइव बारिश को रिकॉर्ड करके अपने संगीत में उन्होंने प्रयोग किया है। चाबियां, बॉटल्स, ग्लास, कंघी, सीटी आदि से उन्होंने काफी रचनात्मक संगीत तैयार किया है। चलिए अब यह गीत सुनते हैं फिल्म हम किसी से कम नहीं से।

1976 में एक फिल्म आई थी महबूब। इसमें एक बहुत ही फेमस गाना है मेरे नैना सावन भादो, जो कि किशोर कुमार और लता मंगेशकर दोनों की आवाजों में सोलो सॉन्ग्स की तरह रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके पीछे एक कहानी है। जब पंचमदा ने यह धुन किशोर कुमार को सुनाई तो किशोर कुमार ने उसे टफ मानकर मना कर दिया। फिर पंचमदा ने किसी तरह किशोर कुमार को यह गीत गाने के लिए मना लिया, परंतु किशोर कुमार की एक शर्त थी कि इस गीत को पहले लता जी से गवा दिया जाए। फिर उस गीत को एक हफ्ते तक सुनने के बाद किशोर कुमार ने यह गीत गाया। चलिए वही स्पेशल गीत अब सुनते हैं।

1995 में फिल्मफेयर अवार्ड्स ने फिल्मफेयर आर डी बर्मन अवार्ड फॉर न्यू म्यूजिक टैलेंट नामक एक अवार्ड बनाया पंचम दा की याद में। इस अवार्ड को अपकमिंग म्यूजिक टैलेंट को दिया जाता है। पंचम दा ने नए जमाने के संगीतकार जतिन ललित, विशाल शेखर जैसे लोगों को प्रभावित किया है। आखिर में हम सुनेंगे 1942 लव स्टोरी फिल्म का मेरा फेवरेट गीत। यह फिल्म पंचम दा की आखिरी कृतियों में गिनी जाती है। आशा है आज का यह आर डी बर्मन पंचम दा पर मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और नॉस्टैल्जिक गीतों को सुनकर आपकी पुरानी यादें भी ताजा हुई होंगी। अब यह कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो चला है। अगले महीने फिर मुलाकात होगी। अब आपकी आरजे सीमा श्री कुमार को आज्ञा दीजिए। सीमा नाउ साइनिंग ऑफ। नमस्कार।